0: Resistance 104.4 FM.
1: Thank you very much.
2: मित्रों, हजारों साल बाद ये आपने जनता धर्म की ओर करवट बदली है। करवट अभी खड़ी हुई नहीं, खड़ी तो उसी दिन होगी 30 अक्टूबर को। उस नए इतिहास के निर्माण करने में बम्बई से ज्यादा धर्म प्रेमी आए। इस नया इतिहास रखे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण।
3: आई अपील टू यू, राम ज्योति विल give you all the inspiration needed for the betterment of the life. All what is needed for betterment of life is only Ram. If there is no Ram, there is no survival. For that purpose,
4: Jannmabhoomi actually belongs to Hindus. It's all Hindu only. We are all Hindu and we are supporter of Hindu.
5: आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा?
4: Definitely, 100%.
5: आप क्या काम करते हैं?
4: I am doing my business, oil business.
5: तो आप जाने वाले हैं अयोध्या?
4: Yeah.
5: कौन सी तारीख को निकलेंगे?
4: That depends on my booking.
5: यहाँ से कितने लोग जाएंगे?
4: Say, well, not less than 50,000.
6: The Babri Mosque at Ayodhya was built in 1528. About 50 years later,